0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुसाया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उही माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?